यह आकाशवाणी एडिलेड ऑस्ट्रेलिया है। हम 103.1 एफएम पर बोल रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड 5ebi.com.au। आज आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ, डीके कुलश्रेष्ठा। चलिए सुनते हैं एक भारतीय वाद्य संगीत।

साथियों, अब पेश खिदमत है एक विवेक वार्ता। उसका उन्वान यानी कि शीर्षक है व्यर्थ का नुकसान। हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य चल रहा था। मदन मोहन मालवीय जी राजस्थान के एक सेठ के घर चंदा मांगने गए। उन दिनों बिजली नहीं थी, रोशनी के लिए लालटेन का प्रयोग होता था। सेठ जी ने नौकर से लालटेन जलाने की बात कही। नौकर ने लालटेन जलाने के लिए दिया सलाई की तीली जलाई। नौकर ने तीन बार तीली जलाई और तीनों बार ही वह बुझ गई। सेठ जी ने तीन तीलियों को खराब करने पर नौकर को बहुत डांटा। मालवीय जी ने सोचा, यह सेठ बड़ा कंजूस लगता है, शायद चंदे में एक पैसा भी नहीं देगा। सुबह मालवीय जी जगे और प्रस्थान करने से पहले सोचा कि सेठ से मिलता चलूं। यह सोच ही रहे थे कि सेठ ने उनके कमरे में प्रवेश किया और विश्वविद्यालय के लिए 50,000 रुपये भेंट किए। मालवीय जी ने मुस्कराते हुए कहा कि रात तीली बर्बाद करने पर आप जिस तरह नौकर को डांट रहे थे, उससे तो मुझे यही लगा कि आप चंदा बिल्कुल नहीं देंगे। सेठ ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं व्यर्थ का नुकसान सहन नहीं करता हूँ, लेकिन बड़ा प्रयोजन हो तो मैं अपनी सारी संपत्ति दे सकता हूँ। आखिर यह किस दिन के लिए है?

0: अभी आपने एक ज्ञानवर्धक भजन सुना महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हो, बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं। गिरना भी अच्छा है दोस्तों, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कफन ये जनाजे ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरी तरह खुद कर्ज निकला, जिंदा थे तो तैरने ना दिए और मर गए तो डूबने ना दिए। क्या बात करे इस दुनिया की, क्या बात करे इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसको कभी देखा ही नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। आज मुलाकात हुई जाती हुई उम्र से, मैंने कहा जरा ठहरो तो, वह हंसकर इठलाते हुए बोली मैं उम्र हूं ठहरती नहीं, पाना चाहते हो मुझको तो मेरे हर कदम के संग चलो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कैसे चलूं मैं बनकर तेरा हम कदम, तेरे संग चलने पर छोड़ना होगा मुझको मेरा बचपन, मेरी नादानी मेरा लड़कपन, तो ही बता दे कैसे समझदारी की दुनिया अपना लूं, जहां है नफरतें दूरियां शिकायतें और अकेलापन। मैं तो दुनियाए चमन में बस एक मुसाफिर हूं, गुजरते वक्त के साथ एक दिन यूं ही गुजर जाऊंगा, करके कुछ आंखों को नम कुछ दिलों में यादें बनकर बस जाऊंगा।
0: अभी आपने जो आला अल्फाज सुने वो स्वयं श्री हरवंश राय बच्चन की आवाज में थे।

0: अभी आपने एक गजल सुनी हरिहर हंस की आवाज में। कलाम था होमार बाराबंकी का। चलिए अब युवा पीढ़ी के जज्बातों की तरफ तवज्जह देते हैं
1: कि दिल को अपने साइड में रखकर थोड़ा इस्तेमाल करो, कि दिल को अपने साइड में रखकर थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो, और बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो। शुक्रिया। कि दिल को अपने साइड में रखकर थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो, और बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो। तुम उसे मनाने जाओगी वो तुम्हें सताने आएगा, तुम उसे मनाने जाओगी वो तुम्हें सताने आएगा, देकर प्यार का वादा तुमको वो तुम्हें रुलाने आएगा। तुम उसे मनाने जाओगी वो तुम्हें सताने आएगा, और देकर प्यार का वादा तुमको तुम्हें रुलाने आएगा। जो हंसी देकर के आंसू दे उस पर ना एतबार करो, और बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उसे अपने राज बताओगी वो तुमसे अपने राज छुपाएगा, कि तुम उसे अपने राज बताओगी वो तुमसे अपने राज छुपाएगा, प्यारी प्यारी बातें करके तुमको वो बहलाएगा। कि तुम उसे अपने राज बताओगी वो तुमसे अपने राज छुपाएगा, और प्यारी प्यारी बातें करके तुमको वो बहलाएगा। चेहरों को पढ़ना सीखो, खुद को थोड़ा तैयार करो, और बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि तुम उससे मिलने जाओगी वो किसी और से मिलकर आएगा, कि तुम उससे मिलने जाओगी वो किसी और से मिलकर आएगा, और शादी का वादा कर तुमसे तुम्हें बिस्तर तक ले जाएगा। कि तुम उससे मिलने जाओगी वो किसी और से मिलकर आएगा, और शादी का वादा कर तुमसे तुम्हें बिस्तर तक ले जाएगा। बुलाए कोई भी मिलने अकेले तो झट से तुम इनकार करो, और बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उसमें खोती जाओगी वो दुनिया का हो जाएगा, तुम उसमें खोती जाओगी वो दुनिया का हो जाएगा, जब मन भर जाएगा तुमसे किसी और का वो हो जाएगा। तुम उसमें खोती जाओगी वो दुनिया का हो जाएगा, और जब मन भर जाएगा तुमसे किसी और का वो हो जाएगा। जो पल पल बदले घर अपना ऐसे परिंदे को आजाद करो, और बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कियों में है ये खूबी वो सब पहचान लेती हैं, लड़कियों में है ये खूबी वो सब पहचान लेती हैं, और किसकी नीयत कैसी है आंखों से जान लेती हैं। लड़कियों में है ये खूबी वो सब पहचान लेती हैं, और किसकी नीयत कैसी है आंखों से जान लेती हैं। तो तुम भी अपनी खूबी को ऐसे ना बर्बाद करो, और अच्छे लड़के भी हैं यहाँ, अपनी खूबी का इस्तेमाल करो, बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि दिल को अपने साइड में रखकर दिमाग का भी इस्तेमाल करो, और बेवफाओं का जमाना है, थोड़ा संभल कर प्यार करो।

0: अब लीजिए हम पेश करते हैं सुरैया का एक संक्षिप्त जीवन परिचय।
1: बड़ी हीरोइन मलिका तरंगम, नाम सुरैया जमाल शेख। नाम तो आपने इनका सुना है, अब देखिए सुरैया जी की जिंदगी की दास्तान। जन्म 15 जून 1929 पंजाब के गुजरांवाला इलाके में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी।
2: रोशन जी, अम्मी जा रही हो बेटी, तो मेरी तरफ से भी नियाज करा देना।
1: हालांकि इन्होंने कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया था संगीत का।
3: जरा धीरे धीरे बोली, मैं गीत सोच रही हूँ।
1: पर फिर भी ये सबसे बेहतरीन गायिका।
4: क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे।
1: और अदाकारा बनी।
3: क्यों नहीं, शहर जाकर लोग कड़वे ही हो जाते हैं।
1: सुरैया जी के वालिद एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान चलाते थे। बाद में गुजरांवाला से ये लाहौर आए और उसके बाद अपनी नानी और मामा की जिद पर सुरैया को मुंबई ले आया गया। मुंबई में इनकी पढ़ाई जेबी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स फोर्ट इलाके में हुई और घर पर ही इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान लिया।
2: दूध पीकर लिखे तो ज्यादा अच्छे गीत लिखे जाएंगे।
1: सुरैया ने बचपन में ही फिल्मों में शुरुआत कर दी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ये नजर आई सन 1937 की फिल्म उसने क्या सोचा, और उसके बाद 1941 की फिल्म ताजमहल में भी ये नजर आई। सन 1941 की ताजमहल का संगीत एसडी बर्मन ने दिया था, और ये सब मुमकिन हुआ सुरैया के मामा जान की वजह से, जिनका नाम जहूर, और वो फिल्मों में पहले से ही बतौर विलन काम कर रहे थे। फिल्म ताजमहल को बनाने वाले नानू भाई वकील को 12 साल की सुरैया इतनी अच्छी लगी, इन्होंने मुमताज महल के बचपन का किरदार निभाया। बतौर सिंगर भी सुरैया की मदद करने पहुंच गए इनके दो मित्र, वो मित्र जिन्होंने आगे जाकर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया, एक महान संगीतकार मदन मोहन और दूसरे महान फिल्म मेकर और एक्टर राज कपूर। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे, और सुरैया की आवाज सुन इन दोनों बच्चों ने जरा सी जिद की कि क्यों नहीं तुम भी ऑल इंडिया रेडियो में चल के गाती।
4: जीवन द्वारे दिलिये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया, पिया पिया हो पिया पिया।
1: ऑल इंडिया रेडियो पर जब सुरैया की आवाज महान संगीतकार नौशाद साहब ने सुनी, तो उन्होंने फौरन अपने मित्र कारदार की पिक्चर शारदा में इनसे गाना गवाया, और ये बात सन 1942 की है। ये बहुत छोटी थी और इन्हें बकायदा स्टूल पे खड़े होकर माइक पे गाना पड़ता था, और वो गाना इनसे उम्र में कहीं बड़ी हीरोइन महताब के ऊपर फिल्माया गया था। यहाँ से गायकी का सफर शुरू हुआ, और फिर तो स्टेशन मास्टर, कानून और एक लंबी फहरिस्त है जिन फिल्मों के लिए सुरैया ने गाने गाए।
4: आज कोई है आने वाला।
1: अभी वो वक्त दूर था जहाँ पर सुरैया की मुलाकात एक नए एक्टर देवानंद से होनी थी। उससे पहले ही सुरैया एक बड़ा नाम बन चुकी थी।
5: ओहो, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रानी।
1: 1942 में फिल्म तमन्ना के लिए सुरैया ने मन्ना डे के साथ अपना पहला डुएट गाया था। गाना था जागो आई उषा। ये बात भी गौर करने लायक है कि महताब ही इकलौती ऐसी हीरोइन रही जिन्हें सुरैया जी ने अपनी आवाज दी फिल्म शारदा, कानून और संजोग के लिए। 1943 में इन्होंने बड़ों के किरदार निभाने भी शुरू किए। फिल्म इशारा में ये नजर आई। फिल्म अनमोल घड़ी में भी इनका काम बहुत सराहा गया।
3: हाँ।
1: और उसके बाद तो इन्होंने पलट के देखा ही नहीं। उस दौर की कोई भी हीरोइन इनके आसपास भी नहीं थी।
2: चल बे मेरी निगाह में दोनों जहां के हैं, मुझसे छुपेंगे आप ऐसे कहां के हैं।
1: ये बात भी गौर करने लायक है, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार सुरैया से जरा पीछे रहे। सुरैया पहली अभिनेत्री थी जो एक फिल्म के लिए 1,00,000 रुपए की फीस लिया करती थी, और फिल्म इंडस्ट्री की ये त्रिमूर्ति वहाँ तक नहीं पहुँची थी।
2: अंगूर खट्टे हैं।
1: सुरैया जी का सफर जारी था, और इसी बीच इनकी मुलाकात हुई देवानंद साहब से, जो उस वक्त धीरे धीरे अपना करियर बना रहे थे। इनका प्यार परवान चढ़ा।
5: ओहो, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रानी।
3: मैं तो नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई हो।
1: इन दोनों ने 6 फिल्मों में काम किया, 1948 में विद्या, 1949 में जीत, 1949 में ही शायर भी और 1950 में अफसर। 1948 में विद्या, 1949 में जीत, 1949 में ही शायर भी और 1950 में अफसर। 1950 की एक और फिल्म आई थी नीली और 1951 में दो सितारे।
3: पूरे 4 साल बाद आए हैं।
1: ये फिल्में तो बहुत कामयाब नहीं हुई पर इनका प्यार कामयाब हो रहा था।
3: शहर जाकर लोग कड़वे ही हो जाते हैं, जो जाता है बदल जाता है, ना उसे कभी अपना घर याद आता है और ना घर वाले।
1: वो एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया था जहां पर देवानंद और सुरैया दोनों का ही दिल टूटा।
5: किसी के दिल तोड़ना बुरा होता है।
3: दिल तोड़ने का मतलब समझते हैं?
1: बात दरअसल ये थी, सुरैया जी की नानी जान ये कतई नहीं चाहती थी कि देवानंद साहब के साथ इनका रिश्ता आगे बढ़े। बहुत मिन्नत करने के बावजूद इन दोनों की शादी नहीं हो पाई।
4: दिल की दुनिया उजड़ गई और जाने वाले चले गए।
1: देव साहब और सुरैया जी की आखिरी मुलाकात बड़ी दर्द भरी रही। ये दोनों मिले, एक दूसरे के गले लग के फूट फूट के रोए और फिर एक दूसरे से ना मिलने का वादा कर लौट गए। देव साहब ने इसके बाद अभिनेत्री कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंगा है, उनसे शादी कर ली, पर सुरैया ता उम्र कुंवारी रही। नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी जबरदस्त अभिनेत्रियां, पर उस दौर में जो मकाम सुरैया ने बनाया था अपने लिए वो तब तक कोई और नहीं बना पाया था। इनकी जिंदगी से जुड़ी कमाल की एक और बात सामने आती है। 1954 की फिल्म वारिस में इनके हीरो थे महान गायक तलत महमूद।
6: आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की।
1: और 1953 की फिल्म माशूका में इनके हीरो थे महान गायक।

0: इन्होंने राज कपूर साहब के साथ तो एक फिल्म में जरूर काम किया, नाम था दास्तां। 1950 की ये फिल्म थी, पर दिलीप कुमार के साथ इन्होंने काम नहीं किया। फिल्म का नाम था जानवर।
1: वो क्यों छुपा लिया? इस महफिल में शर्माना हिमाकत है।
0: और फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हो गईं।
1: तुम्हारी इज्जत इज्जत है और दूसरों की इज्जत खिलौना।
0: सुरैया जी ने ये तय किया कि फिल्म को छोड़ देंगी और ठीक वैसा ही हुआ। 22 साल के लंबे करियर में सुरैया जी ने बहुत उम्दा काम किया। 1963 के बाद सुरैया जी ने फिर काम नहीं किया।
1: खबरदार, मुझे मत आना, मुझ पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए।
0: और सन 2004 में वो दिन भी आ गया जब सुरैया इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। ये मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के कृष्ण महल अपार्टमेंट में रहा करती थी। इनकी उम्र 74 साल थी जब कैंसर से इनकी मौत हो गई। 3 मई सन 2013 को एक डाक टिकट जारी किया गया जिसपे सुरैया जी का चेहरा था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुरैया जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
2: उन्वान है अब तो आजा, मेरे जिस्म से तो अब जान निकल जाने को है, अब तो आजा के मौसम बदल जाने को है। फना हो जाएंगे कुछ देर में शबनम के ये मोती, फना हो जाएंगे कुछ देर में शबनम के ये मोती, अब तो आजा कि ये रात भी ढल जाने को है। तेरे लिए रखा है कब से रोक कर मैंने कमर, अब तो आजा कि ये लम्हा गुजर जाने को है। कब से मदहोश बैठा हूँ तेरे आने की खबर से, अब तो आजा कि ये नशा उतर जाने को है। क़यामत से कम न होगा अगर तू नहीं आया, क़यामत से कम न होगा अगर तू नहीं आया, अब तो आजा कि ये वक्त ठहर जाने को है। मुझे देते हैं लोग ताने दीवाना समझ कर, अब तो आजा कि अब बात बिगड़ जाने को है।

अगले गाने के साथ ही हमारा आज का भारतीय प्रसारण समाप्त होता है। अब डॉक्टर डी के कुलश्रेष्ठ आपसे विदा चाहते हैं। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।